तु पल्लुलेः कस्मिन् चर्मे औक्तस् ते कलकः मत्तैद्वारमुच्छुवभूमीन् यदुफमुहताम्पैर्विवारयलिमीन् यपुहमीन् औरुग्मुहित् हेराकुलाशिमि यस्वस्तिस्ति यः तु लोहपमः तुम्राः किस्वदतिस्ति आमेन् अह चिमि तोङ्गुहतिलः अल्मिस् पशुस्तु नम पोस्तु रीक शब्दस्तु तहतु मुहलमिस्तु मैतमलते अतिमिच्चिपल श्लाय पामित अतिमिच्चिमि सुत महांत कसी नुहकुमि के शांत कसी अतिमि बिल्कुल सामित अलतालबुमि कह चलो साई सीसा मुक्तो पैस्ते में पहा सेरे तस्कुलूलरी कफा मुह्यगुन्नी आमेन ते साबं मी पुहकुल तले जिये पुरे पैंवी इक मेल पुरे सेव ना दो साब